क्या बात है ना, सब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 33, 37, क्या बात है चमकीला साहब। हाय हाय खूबसूरत शाम ते खूबसूरत शाम विच खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरां ते मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्रभ संधू

0: locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: किसी ने भी अगर कार वैन एसयूवी लेना टॉप टॉप टॉप का नाम एक है वह है एरन मिल्स एक्यूरा। एरन मिल्स एक्यूरा दे जगदीप भला और करण शर्मा नू कॉल करो। नंबर वन सर्विस, नंबर वन रेट्स, प्रोफेशनल अते ऑनेस्ट टीम ते रिलायबल। सो कार वैन एसयूवी कोई भी लेना होवे एरन मिल्स एक्यूरा 905-828-5800 905

0: Doppelsad, jobb, asas, glasas, hebbises, nadert, hosibisas, bole, sonihal, sasilkal.
1: मम्मी पापा दे वीजे ली सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते बंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है शमी पठल होरा ने तोड़ा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दियां बेस्ट डील ले याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम 416-917-7763 416-917-7763 Life insurance, visitor insurance, super visa insurance, critical illness, disability insurance, RESP, travel insurance, convert expensive mortgage insurance to term insurance.

0: Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 9054512600.
1: Tax da season aa chukya hai. Purane accountant naal khush nahi ho ya tax de vich thodiyan bachat kithe hoiyan? Kede kede limits tode layi sarkar ne set kite han? Loan mil sakde ne ya kithe vi thodi company di shape kis tarah honi chahidi hai? Punjab Tax Solution de Jagjit Sacha ji. Mississauga te Cambridge diyan do locations ton naviyan files jithe le rahe ne utthe tuhanu suchet karde han aun wale samay layi. Tax diyan services layi Punjab Tax Solution 416-720-3642 416-720-3642 Punjab Tax Solution.
2: ड्राइव कर रहे हो, शो नो एंजॉय कर रहे हो, कुछ भूल रहे हो?
3: ड्राइविंग लाइसेंस?
2: नो.
3: पुलिस ऑफिसर?
2: नो नो.
3: ट्रैफिक लाइट्स?
2: नो.
3: देन
1: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिल दा ए मैसेज. मोस्ट ऑफ इंटोरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक कर ले. आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज ना काम कर रहे पवन कौर गिल. 3 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस कट सकदी है ऑटो होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी. 647-325-9900 647-325-9100 पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस.
4: जिंदगी एक सफर है सुहाना.
1: की तुसी कनाडा विच स्टूडेंट वीजा दे उत्ते वर्क परमिट ते आए होए हो या तुसी कैनेडियन सिटीजन या पीआर होल्डर हो? अपने दोस्त रिश्तेदार ते मित्रां नु अगर विजिटर या टूरिस्ट वीजा ते कनाडा बुलाना चाहुंदे हो तां परख्या ते भरोसे वाला नाम पंजाब विच सब तो वध सक्सेस रेट दे नाल इजी वीजा विजिटर वीजा कनाडा दा लगवा के दे रहे हन. वधेरे जानकारी लई इजी वीजा 9592200200 9599220200 ते आज ही कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बनाओ. ਘਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਟਰਸ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੋਗੇ? ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਸ, ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਕਸਟਮ ਕਾਰਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. 7 ਸਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਈ ਸੁਖਮਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-816-8401-416-816-8404-8401.
5: यार आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है. ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है, बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे ने, कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे ने जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जाती है. पर कनाडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस के लिए लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इनसॉल्वेंसी प्रोसेस. तुहानू डेट नू प्रॉपरली असैस करन, मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाने विच हेल्प करदे ने. इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच ले आ सकदे हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकदे हो. ज्यादा इन्फॉर्मेशन लई अज ही कॉल करो 416-518-3200 416-518-3200.
6: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है.
7: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
8: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी. हेलो हेलो हेलो.
9: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. बम्प टू बम्प ट्रैफिक एंड बम्प टू बम्प कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 टू 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 टू 1 रेडियो आवाज.
10: ओ यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे, कितनियां तरकीबां लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही.
11: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो पर कृपा ता हो ही नहीं.
12: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया.
13: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता.
14: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते. वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200.

0: रात हमें छड़ दिनी है पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चलिया स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर जेडे कर देने मेरी कार दी केयर बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर
0: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशन ने मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी
1: जी हां कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है रेट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने बतेरी जानकारी ले कॉल करो 905 874 98

What a music man, I love it. जनाब चरणजीत सिंह होजा साहब तो दुनिया छड़ गए, पर उन्हां दे गीतां दे जिहड़े पाए हुए म्यूजिक है वह तो साढ़े तक इदां ही रहने ना। होजा साहब दीआं यादां नूं तेजा करदे आ, कदी सरदूल जी नूं याद करीदा, कदी चरणजीत होजा साहब नूं याद करीदा, पर कुछ गीत इदां दे हुंदे जिहड़े तुहाडी जिंदगी दे नाल सुण लो, ऑलवेज तुहाडे सोहणे सोहणे सोहणे सोहणे महबूब वर्गे लगदे आ।

0: IPL चल रहा है ओनली ऑन करो स्ट्रीम. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
1: लो जी चक्को फिर खुशखबरी. ब्रैम्पटन निवासियों ले खुशखबरी. हुण जदों भी तुसी कैनेडियन, इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबी को। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
3: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. Tusi cheap flight tickets si pal de vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sono chahide ne. Jan tusi visa services di pal de vecho, puri family vacation upper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection of
5: Nobel Fresh Foods share with $1 pay gaya top quality te low price with Nobel Fresh Food fair number le gaya aata dal chawal aur sabzi te dudh kyo sab milega Nobel Fresh Foods 2945 Sandalwood Parkway East Dusi Location 20 Gillingham Drive in Brampton phone 289-801-0566 Nobel Fresh Foods
6: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
7: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888। दैट्स 905-460-8888।
6: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
8: आज खुश तो बात हो गया
9: ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨੋ ਬਫਰਿੰਗ ਵਾਲਾ 4K ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ IPTV ਬਾਕਸ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ।
8: ਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਗਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ?
9: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡਸ ਬੈਸਟ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ IPTV ਬਾਕਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦਾ?
10: ਚੱਲ ਕੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰ
9: ਉਹ ਭਾਜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 40 ਇਅਰਸ ਇਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ।
11: ਡਾਊਨ ਕੋ ਪਕੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
9: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ। ਐਬਨੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਗੋਰ ਰੋਡ 905-204-13 ਜਾਂ ਢਿੱਲੋਂਵੀਡੀਓ.com। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ?
12: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
13: विमला विलेज विलेज पढ़ दी पीओ च जंट पढ़ दा विमला विलेज विलेज विमला विलेज विलेज पढ़ दी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਰਾ ਗੋਇਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਤਨੋ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਖੀ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ।

0: Canada Day Study Visa, Express Entry, Canadian Express Entry, Spousal File, Parents PR, Super Visa, Nanny, Work Permit, Farmer, Investor, या Self-Employed दी File, गल की, Immigration दी हर Problem दा Solution लैन लई, Community दे जाने पहचाने, अते तजरबेकार Immigration Consultant, Gary Virk नु मिलो.
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे Immigration दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना, अते इको ही था. CIC Immigration, हुणे ही कॉल करो, 416-456-6161.
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई.
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है.
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने. पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते.
2: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो. बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे. हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381.
5: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpardeshradio.com ਜਾਂ www.deshpardeshtv.com. ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ਼ TV ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ. ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7.

0: இருக்கா?
1: கனடா டே ஸ்டடி விசா, எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி, கனேடியன் எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி, ஸ்பவுசல் ஃபைல், பேரண்ட்ஸ் பிஆர், சூப்பர் விசா, நேனி, ஒர்க் பர்மிட், ஃபார்மர், இன்வெஸ்டர் யா செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டி ஃபைல், கல் கி இமிகிரேஷன் தி ஹர் ப்ராப்ளம் தா சொல்யூஷன் லைன் லை கம்யூனிட்டி தே ஜானே பெஹச்சானே அதே தஜர்பேகார் இமிகிரேஷன் கன்சல்டன்ட் கேரி விர்க் நு மிலோ.
2: கோய் கேஸ் ரிஃப்யூஸ் ஹோ கயா யா அப்பீல் தே சலா கயா ஹோவே இமிகிரேஷன் தா கோய் பி மஸ்லா, ஹமேஷா யாத் ரக்கோ இக்கோ ஹி நா அதே இக்கோ ஹி தா CIC Immigration. ஹுனே ஹி கால் கரோ 416-456-6161.
3: कनाडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
4: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
5: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वद कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट ले हुने कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते।
3: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-456-3381 416-457-3381।

मेरा नचो ने फिर अपॉइंटमेंट बुक करो 905-460-8888 संपर्क किया जा सकता है। सो दोस्तों हम तुम दस दिए कि ब्रिटिश कोलंबिया के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के महंगे अनसोल्ड कॉन्डोज वाले बड़े बड़े डिवेलपर्स न साडे ही टैक्सपेयर के पैसों के नाल बेल आउट करने की अनाउंसमेंट पेश होने तो बाद हुण कनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ते ओदी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस फेस कर रहे ने, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस कर रहे ने। ते पीएम ने अज आप ही कहा, आप ही मनिया कि इस प्रोग्राम के बारे असी लोगों नू सही तरह नहीं समझाया, यह बेल आउट नहीं हैगी, यह लोगों का ही फायदा होना है। पर किन्ने क लोगों का फायदा होना यार, 2200 कांडो यह खरीद रहे ने, किन्ने क लोगों का फायदा होना ते किहड़े किस्म दे लोगों का फायदा होना, की उन्होंने अद्धे रेफ्यूजी होणगे। इत्थे आम बंदा इन्नी महंगाई दे विच मसा आप दियां मोर्गेज दियां जां किराए दियां किश्तां पे कर रहा, ते उन्हां दा ही हार्ड अर्नड टैक्सपेयर दा पैसा रीडिस्ट्रीब्यूट करके एक कुछ सिलैक्ट लोगों के लिए सबसिडाइज हाउसिंग का प्रबंध करना चाहते ने। वाय असी होरां लोकां दे लई उन्हां दे सिर दे उपर छत दा खर्चा क्यों चक्कीए, जदों आम बंदे कोले आपदे ही सिर दे उपर दे छत दे लई मसा पैसा हैगा। इह किहड़े दुनिया दा कोई सिस्टम है? दिस इज़न्ट सोशलिज़म, वी लिव इन अ ओपन फ्री मार्केट कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। मेरा पैसा किसी होर दे घर दे वल जां उन्हां नूं सबसिडाइज घर देण दे वल तां कदे जाणा ही नहीं चाहीदा। मैं इन्नी मेहनत नाल लखां डॉलर सीआर नूं कर ले दिन्ना, जे मैनूं उहदे विच्चों मसा कोई फायदा हुंदा ते वेलफेयर स्टेट ही चलाई जा रही है। तुहाडे हार्ड अर्न डॉलरस क्यों इस तरह के फालतू कम्मां ते खर्चे जा रहे ने? लोग सवाल तो पुछते रहेंदे, गुस्से होंगे रेंदे, एक कान च गल आती है दूजे निकल जाती है, अगले हफ्ते तक कोई नवा पंगा सोशल मीडिया से कोई नवी ट्रेंड, तो फिर भुल ही जाते हैं कि साडा ही टैक्सपेयर की बर्बादी की जा रही है। कमाल की गल है। सो पिछले हफ्ते ही कनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ते ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड ईबी ने 5 बिलियन प्लस दे फंडिंग का प्रबंध किया अगले 10 सालों के लिए, जेदे विचों इमीडिएटली तां $3.2 billion दे सुइट ऑफ मेजर्स नूं अनाउंस किया है ब्रिटिश कोलंबिया दे स्ट्रगल कर रहे हाउसिंग सैक्टर के लिए, जेदे विच तां सब तो खास प्रबंध तां किया गया है बड़े ही डिवेलपर्स दे, ऑलरेडी बने हुए, अड़े हुए, फसे हुए, नहीं विक रहे, बेसिकली बेकार, लखां ही डॉलर घट दे विच हुण अप्रीजल दे विच फर्क वाले 2200 बहुत महंगे पर बहुत छोटे अनसोल्ड कॉन्डोस, इन्हां नूं हुण सो कॉल्ड अफोर्डेबल हाउसिंग तक कन्वर्ट किया जाऊगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वाई फैडरल सरकार की जिम्मेवारी कदे होनी नहीं चाहिए किसी घर देने दे लई, उन्हां नूं इस तरह दियां पॉलिसीज ते कानून तैयार करने चाहिए ने जिहदे नाल ओपन फ्री मार्केट दे विच बिल्डर ले खर्चा ही इन्ना घट होवे कि ओह अफोर्डेबल घर बना लैन ते अगे वेच लैन ते फिर भी फायदा होवे। राह दे विचों निकलो, परमिट्स अप्रूवल ज़्यादा छेती करो, डिवेलपमेंट चार्जेस कटाओ, ब्यूरोक्रेसी रेड टेप नूं कटाओ, ते आपे ही काम शायद अफोर्डेबल हो सकता है। टैरिफ्स नूं कटा लो, डील कोई ना कोई बना लो, शायद इत्थे होर लोग काम ते लग सकते हैं, पर वो तो करना नहीं है। जड़ी जड़ दी इशू है दैट हाउसिंग इज जस्ट टू एक्सपेंसिव टू मेक इन दिस कंट्री, बनाना ही इनू बहुत महंगा है, पार्ट्स भी, लेबर भी, टैक्सेस भी, एवरीथिंग ऑन टॉप भी, ते सरकार राह दे विच ही एक एक काम दे लई काम नू इन्ना लमकाउंदी आ कि उहना खर्चे 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुणा ज़्यादा वध जांदे आ। वह जिहड़ी जड़ दी इशू है, रूट कॉज है, उहनू तां कदे एड्रैस ही नहीं करना, क्योंकि इहदे नाल तां लखां लोकां दी इंप्लॉयमेंट तां फैडरल सरकार दे विच भी चलदी आ ते अगे इन्हां दे ही चेले चमचियां ते परिवार के मैंबरस के नाल एसोसीएट्स के बिजनेस चलते हैं, वो जड़ की इशू एड्रैस नहीं करनी। पर हुण बड़े बिल्डर के जिहड़े अड़े हुए इन्ने हज़ारा यूनिट ने, उन्होंने पता नहीं, रब ही जानता कि किन्ने महंगे प्राइस से जाके चक के साडे टैक्सपेयर के पैसों नाल
ਮਸਾਂ ਕੋਈ 2000 ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲੀਅਨਸ ਖਰਚ ਕੇ 2200

0: क्या बात है, आ खड़ा गाना टोर गोरा चक वाला सुदेश कुमारी। हाँ चलो देखते हैं, पता नहीं मैं कभी सुनया नहीं बट ऑटोमेटिकली आ गया। खैर सो नंबर है अपना 905-673-3337 9057333337 ते गल्लां बातां थोड़ियां साडियां हो रही ने। एक तां तुसीं याद रखो जरूर मैसेज सब्जी मार्केट दा, सब्जी मार्केट रेस्टोरेंट भी है ग्रोसरी स्टोर भी है, 24 घंटे 7 दिन दोनों लोकेशन तो खुले ने। सब्जी मार्केट ते तुसीं जाओ, हरियां ताजियां सब्जियां, हरे मटर, गोल कद्दू, चप्पन कद्दू, टिंडो, फ्रैश साग, बाथू आदि मिल रहा, ते बाय वन गेट वन फ्री चिकन लेग, बिरयानी, फिश पकौड़ा। सब्जी मार्केट 10 लोड मेल गेट सैंडल रोड मैकलॉगलिन या 10970 ब्रैमली रोड ब्रैमली एंड कंट्री साइड। एक तुसीं मिस्टर सिंह पीजे दी डीलां दा फायदा जरूर चको यार। मिस्टर सिंह पीजे ने वर्ल्ड कप दे मौके ते बड़िया जबरदस्त डीलां लाइया हुई ने। सो मीडियम पीजा 4 टॉपिंग 1 डिप 1 साइड 24.99, लार्ज पीजा 4 टॉपिंग 1 डिप 1 साइड 27.99, ते एक्स्ट्रा लार्ज पीजा 4 टॉपिंग 1 डिप 1 साइड 31.99। 100% प्योर वेजिटेरियन मिस्टर सिंह पीजा 905-504-1000 9055004000 9055004000। मिस्टर सिंह पीजे की टीम ने तुसी जरूर याद रखो। ते साडे नाल जुड़ चुके ने सरांश यूनी ग्लोबल एडवाइजरी तो, ते सरांश कोलों गवर्नमेंट दियां एजुकेशन ग्रांट्स की जानकारी लेने आ। सरांश पहला तो वेलकम सर, की हाल?
1: थैंक यू जी, सत श्री अकाल जी सभी नूं, वधिया जी, तुसी दस्सो जी।
0: बहुत वधिया सर, बहुत वधिया। सो सरांश हमेशा कोई ना कोई नवे लिसनर जुड़दे ने, सो जिहड़े नवे लिसनर्स ने उहनां नूं जरूर दो मैसेज
1: जी। वही बात है, लाइक अब लिमिटेड टाइम ही रह गया है, अराउंड 25 दिन ही रह गए हैं सिर्फ। तो अगर आपने अभी भी एनरोल नहीं करा गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन प्रोग्राम्स में, तो आप पीछे ना रहे। आपके आस पड़ोस भाई बहन माता पिता ऑलमोस्ट सब एनरोल हो चुके होंगे। लाइक 30,000 to 100,000 की फंडिंग अपने अकाउंट में डायरेक्ट गवर्नमेंट से हासिल करें, जिसका हाफ पोर्शन तो नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स है जो कि टैक्स फ्री है, इनकम में भी ऐड नहीं होता, आपका चाइल्ड बेनिफिट पे भी असर नहीं पड़ता उसका, आपकी इनकम उतनी ही रहती है जितनी आपकी है। और लाइक इसमें एज कोई लिमिट नहीं है, आप 50 के हैं, 30 के हैं या 75 के हैं, पेंशन पे आप एलिजिबल है। आपको क्रेडिट चेक भी इसमें गवर्नमेंट आपको क्रेडिट चेक नहीं करती। फंडिंग कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है? नहीं, गवर्नमेंट कर रही है। सो आप PR सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है, आपकी इनकम कम है 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे, लेस देन $70,000 है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हो गए लाइक उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, हाउसवाइफ, अनएम्प्लॉयड, कॉल करें, असेसमेंट कराएं, आप हमें अभी भी कॉल कर सकते हैं।
0: नंबर है सरांश का 437-264-3175। सरांश सो सुनिया कि ग्रांट बंद हो रही है, कदों बंद हो रही है, ते फंडिंग जिहड़ी है लगभग किन्ने क दी बन जांदी है?
1: हाँ जी, ग्रांट बंद है 1 अगस्त के बाद जो एनरोल करेगा उसके लिए ग्रांट्स बंद है, लोन आएगा उसके बाद जो एनरोल करेगा सिर्फ। तो लोन तो मैं रिकमेंड नहीं करता ना, तो इसलिए अवेयरनेस का मैसेज आप लाइक इसको अपने हित में लीजिए। आप कुछ ही दिन रह गए हैं, 22 जुलाई को लास्ट बैच है, मतलब 15 जुलाई के आसपास रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, तो आप अभी एनरोल करें। फंडिंग डिपेंड करती है आपके फैमिली साइज पे, आप मैरिड हैं आपकी 45,000 की फंडिंग मिलती है, आप मैरिड विद 1 kid है अप टू 60,000, मैरिड विद 2 kids हैं तो लाइक 80,000, सिंगल मदर विद 3 kids है अप टू 100,000, डिपेंड करता है फैमिली सिचुएशन पे, आपकी फैमिली सिचुएशन पे। और जितनी इनकम आपकी कम है और जितनी आपके किड्स ज्यादा हैं उतनी आपकी फंडिंग ज्यादा आती है। तो यहाँ पे आपका गवर्नमेंट आपका बैंक की तरह इनकम नहीं देख रही कितनी ज्यादा आपने इनकम कमाई है, यहाँ पे आपका फैमिली साइज देखा जा रहा है, और जितनी कम इनकम है उतना ही आपको ज्यादा फायदा है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, लाइक अनएम्प्लॉयड स्मॉल बिजनेस ओनर को अच्छा फायदा है, कॉल करें, असेसमेंट कराएं, ग्रांट्स हासिल करें।
0: नंबर है सरांश दा 437-264-3175-437-264-3175। सरांश लोन तो पहला ही बहुत लोगों का होंगे, की पॉसिबल है कि सिर्फ ग्रांट ही मिल जाए?
1: हाँ जी बिल्कुल जी। सो आप मान के चले अगर फैमिली ऑफ 4 है, तो आप जिनकी 80,000 की अप्रोक्सीमेटली फंडिंग बनती है उसमें से $40,000 तो ग्रांट है जो वापिस ही नहीं करना होता आपने, जो रेस्ट $40,000 है वो ऑप्शनल लोन है। डर लगता है लोन से, मत लीजिए, बट आप लोग जब हमारे ऑफिस आते हैं आपको पता लगता है कि लोन 0% पे है और 1.5 साल बाद भी ये लोन 2.5% है पूरे साल का ब्याज, तो कोई मतलब 95% लोग लोन भी ले लेते ग्रांट के साथ, बट यस लोन इज ऑप्शनल, ग्रांट पे फोकस करें, तो ग्रांट आज है कल नहीं है, तो कॉल करें ऑफिस आए।
0: एंड मान लो कि जॉब नहीं लगती तो लोन नहीं पे कर सकते, तो फिर की होगा, लोन डिफर भी हो जाता है इस सिचुएशन?
1: बिल्कुल जी, इसमें ये चीज तो यूनिक है। सो गवर्नमेंट, आप लाइक आज एनरोल करते हैं, आपने एक साल का कोर्स करा, आप लोन नहीं दे पाते महीने के $150-$200 किस्त, आपकी जॉब नहीं लगी है, लोन डेफर हो जाता है एक साल तक, दो साल भी, तीन साल भी। तो मतलब आपको पहले तो कोलैटरल फ्री, सिक्योरिटी फ्री, क्रेडिट चेक फ्री फंडिंग मिलती 30,000 to $100,000 की। लोन भी अगर आपकी हालत खराब है, नहीं चल रहा खर्चा घर का, तो लोन भी आपका डेफर हो जाता है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। ग्रांट तो देनी नहीं है, लोन भी डेफर हो सकता है अगर आपकी मजबूरी है, तो आप इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। प्रॉपर ऑफिस है जी हमारा 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड पे, कोई टिम हॉर्टन में नहीं मिलते, कोई वर्चुअल ऑफिस नहीं है, कोई कैफे पे नहीं मिलते, ऑफिस आए। आज भी कम से कम 15 क्लाइंट ऑफिस आए थे और लाइक आधा से ज्यादा एनरोल हो गए हैं।
0: वेरी गुड। सो सराज का नंबर है 437-264-3175, 437-264-3175। सराज इस तरह का फीस है, कोई हिडन फीस तो नहीं?
1: कोई हिडन फीस नहीं है, इसलिए मैं इतनी मजबूती से अवेयरनेस का मैसेज दे पाता है। कोई कैच होता तो अब तक तो कोई ना कोई आर्ग्यू करता। ओके, सो इसमें बातें, हमारी फीस काम होने के बाद $199 या $499 फ्लैट फीस है। हमारी नजर हमारी छोटी सी फीस पे, ना कि आपकी फंडिंग पे। किसी को ऐसे 30,000 बन रहा है, किसी को लाख बन रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं उससे। आप अपना, आपका पैसा अपने पास रखें, हम एक जरिया है, गवर्नमेंट पैसे दे रही है आपको और हम सिर्फ छोटी सी फीस लेते हैं अपना खर्चा चलाने के लिए। तो आप लाइक इसमें आसान से कोर्सेज है सर, आप मान के चले फुली ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आपने सिर्फ असाइनमेंट्स देनी है, एग्जामिनेशन नहीं है, असाइनमेंट्स भी हफ्ते की एक ही है यार, अटेंडेंस आपने लगानी 75%, बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो कॉल करें, ऑफिस आए, गवर्नमेंट इतनी चीजों में इन्वेस्ट करती है, तो देयर इज नो कैच, कुछ इसमें हिडन नहीं है। कॉल नंबर 437-264-3175, 437-264-3175, अभी कॉल करें एंड एस्टिमेट लें, 437-264-3175। नंबर अगेन जी 437-264-3175,
0: 437-264-3175। सराज थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू सर।
0: 437-264-3175 ते गलबात करो। सो गल जी सी कर रहे सी घूमन फिरन दी, देखिया घूमना फिरना किनू नहीं पसंद, भी लोकल अपने इंटीरियर विच अपने तो दो चार घंटे की ड्राइव दे विच विच कितने कितने घूमन नू किहड़ियां किहड़ियां लोकेशन ने। हुण कुछ लोगों ने कुछ फॉल्स दसियां, किसी ने कहा सेंटेनियल बीच बेरी, एक वीर ने कहा कि एक आइलैंड लेक है ओरेंजविल दे विच, ते डेक्यू फॉल्स है सेंट कैथरीन्स, नाल दी नाल बैंकक्राफ्ट है, बैंकक्राफ्ट मैं यार बहुत सारी लोकेशन कहीं देखी है नहीं। सो एक लिस्ट जी मैं बनाई है, तो वह थोड़ियाँ सारिया रेकमेंडेशन असं पा रहे हैं। सो थोड़े नोन दे विच जे कोई लोकल घूमन फिरन कोई भी लोकेशन ने तो वह किड़िया ने तुसी साडे नाल शेयर कर सकते हो, तुसी सजेशन सलाह देनी चाहते हो तो 905-673-3337 अपना नंबर है, 905-673-3337-905-673-3337-905-673-3337-973-3337-973-3337-973-3337 सो ट्रेल्स भी बहुत ने इत्थे, चलो थोड़ी जी घट ने क्योंकि इत्थे उन्ना हाइकिंग दा एक कह लो कि लैंडस्केप घट है, बीसी वगैरह च हाइकिंग बहुत है, फिर भी कितना कितने तो कुछ लोकेशनस हैगियां ने। सो तुसी लोकल किहड़ी किहड़ियां लोकेशनस नूं रेकमेंड करदे हो घूमण फिरन लई, तां नंबर है अपना 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 6475051557 647-504-1557। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਐਂਡ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੋ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 905-673-3337 905-673-3337। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, 905-673-3337 ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਰਚ ਕਰੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਹੈ ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਂਟ ਜੇਕਬਸ ਵਿਲੇਜ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਂਟ ਜੇਕਬਸ ਵਿਲੇਜ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਟਰਲੂ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥੈਂਟਿਕ ਸਾਈਟਸ, ਟੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰੋ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਕਰੋ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਆਮਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਆ, ਮੇ ਬੀ ਰਾਈਟ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਰੋਂਗ। ਸੋ ਸੇਂਟ ਜੇਕਬਸ ਵਿਲੇਜ ਵਾਟਰਲੂ। ਸੋ ਵਾਟਰਲੂ ਹੋਵੇ, ਲੰਡਨ ਹੋਵੇ, ਓਰੇਂਜਵਿਲ ਹੋਵੇ, ਸੇਂਟ ਕੈਥਰੀਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗਏ ਹੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਪਣਾ 905-673-3337 ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 905-673-3337। ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਵੈਸੇ ਬਣੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਿਸਟ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਿਸਟ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ, PUNJABIELEHRAN, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਲਿਸਟ ਪਲੀਜ਼, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ, PUNJABIELEHRAN। ਮੈਂ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 40-50 ਜਣੇ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਉਹ ਭੇਜੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ 15-20 ਲੋਕਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲਿਸਟ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਹੈ 905-673-3337 ਆਪਣਾ, 905-673-3337 ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। SS Lawn Care ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਚੋਇਸ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਾਹ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਡ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਸ ਕਟਿੰਗ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਵੀਡ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੌਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਫਲਾਵਰ ਬੈਡ ਬਣਵਾਓ ਜਾਂ ਸਾਫ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 437-655-1984।